0: आंधी है।
1: गणतांत्रिक दाबिर एक शक्तिशाली प्रकाश। श्रद्धार साथे स्मरण करी गण अभ्युत्थाने शहीद हवा सकल वीर छात्र जनता के। इतिहास बेचे थाके जुलाई गण अभ्युत्थान श्रद्धाय स्मरणे आमादेर हृदये।